न संतोष परम सुखम न तृष्टयां तपो व्याधि न तृष्टयां तपो व्याधि न च धर्मा